0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

0: ओम श्री दीप नारायण भगवान देवपुरी महादेव की जय। माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। मात पिता गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति। फॉर डूइंग टू आवर योगा प्रैक्टिस विच इज वेरी ग्रेट एंड एग्जैक्टली इट इज कंप्लीट इज दैट सो इन दैट So, both the hands, and now it all once. One, two, three. Four, five, six, your legs. Your yes, 7, the right hand. Eight, sorry. Now you go.
1: 9, 10.
0: Wait, no. Stay. We are not going like this. Look very nice. Next.
1: 10, 11.
0: This is in the whole world about yoga in daily life for all of us, my dears. And we are in Rajasthan, in India, and it is a beautiful place. And we are all practicing very good yoga in daily life.
1: 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27.
0: One. Two.

स्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा उसमें श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मुहूर्त, पूजा मूलम गुरुपदम, मूलम गुरुवाक्यम, मूलम ओम शांति परब्रह्म दीपम सर्वे मोहनम।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: बोले श्री दीप नारायण भगवान
1: की जय।
0: श्री देव पुरुष महादेव
1: की जय। ओ माय फ्रेंड, आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ ब्लिस व्हिच इज एंडलेस एंड डिवाइन। आई एम बेडिंग इन द ओशन ऑफ माय हार्ट।
2: O můj příteli, koupu se v oceánu nekonečnosti, v oceánu blaženosti, tento oceán je v mém srdci.

भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। श्री चंदन देवी जी माता जी की जय।

0: दीप नारायण भगवान अलकपुरी समादेव देवपुरी जी महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन भारत माता की जय।
1: विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।

श्री दीप नारायण भगवान की, श्री श्री देव पुरीश्वर महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, अलकपुरी जी महादेव की, सत्य सनातन धर्म की जय।